0: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसे ही शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नो।
1: मैं के अचन जी सलाम
0: दिला नु टुंबन वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तरान ने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गूंजनगे 24 जुलाई नो। इवेंट्स दे नाल ता फिर देर किस गल दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटां अज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसे भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा नु कॉल कर सकदे हो 6477839873। बस रेडी हो जाओ नचण गाउण ते चूमण दे लई सुरां दे बादशाह मास्टर सलीम दे नाल।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए।
1: सो 905-673-3337 सुख भाई जी भी साडे नाल जुड़ चुके ने, बहुत सारियां कॉल्स आ रही ने, सो कॉल लैने उस तो बाद सुख भाई जी नाल जुड़दे हैं। जी पलविंदर जी, सत श्री अकाल, तुसीं ऑनर हो। साडी कॉल लग चुकी है जी, ग्रैंड होम फर्नीचर ते जिथे बहुत वड्डी सेल लगन जा रही है, तंबू सेल। सो जिथे बहुत सारिया थानू फर्नीचर दी आइटमां तां मिलनगियां मिलनगियां, बड़े बड़े वड्डे डिस्काउंट मिलने और नाल दी नाल बड़े वड्डे तोहफे थानू मिलने। ग्रैंड होम फर्नीचर तो 294 वॉकर ड्राइव। सुख भाई जी आ जाओ।
2: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद संधू साहब। बिल्कुल ग्रैंड होम फर्नीचर के उपर तंबू टेंट सेल लगन जा रही है। सो बहुत सारी इनवेंटरी जी क्लीयर आउट की जानी है फर्नीचर के। सो तुम हाइड्रोलिक बेडरूम सैट लेना चाहते हो, प्योर लैदर के पावर रिकलाइनर, टर्की के सोफा सैट, ईवन तुम कले नाइट स्टैंड चाहिए ने, कली सॉलिड वुड की चेस्ट चाहिए है 50-50 डॉलर के। जे तुम लैदर की डिजाइनर लवशीट चाहिए क्रोम लैक्सर सिर्फ 99 डॉलर जी हाँ, 2-सीटर लवशीट लैदर की क्रोम लैक्सर 99 डॉलर क्लीयर आउट की जा रही है। सॉलिड वुड चेस्टा 50-50 डॉलर के क्लीयर आउट की जा रही। सो बहुत सारे बेडरूम सैट, सोफा सैट, डाइनिंग टेबल जे टेंट सेल के लगन जा रहे, जे क्लीयर आउट होने। सो भी इस वीकेंड के उपर जरूर एक चक्कर लाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे ग्रैंड होम फर्नीचर के उपर 294 वॉकर ड्राइव, 294 वॉकर ड्राइव, 294 वॉकर ड्राइव, ग्रैंड होम फर्नीचर, ग्रैंड होम फर्नीचर की तंबू टेंट सेल भाई जी।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो ग्रैंड होम फर्नीचर से तुम पहुँचना है 905-673-3337 905-673-3337 गल्लां बातां हो रही नहीं।

0: ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 905-673-3337 ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪਾਲ ਸਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ ਜੀ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭੀ ਕੋ। 30,000-100,000 की फंडिंग हासिल कर सकते हैं आप लोग। पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आपका स्टेटस है कनाडा में, ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग दे रही है आपको, फंडिंग आपके खाते में आती है। 30,000-100,000 का जो हाफ पोर्शन है जिसके लिए आप एलिजिबल है वो ग्रांट है। अगर आपका 80,000 का बनता है तो आपको 40,000 ग्रांट होता है उसमें, $40,000। नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, फंडिंग आपके खाते में आती है। हमारी फीस कितनी, काम होने के बाद $200 या $500 है, वन टाइम फीस है। 30,000-100,000 की फंडिंग को मिस ना करें। एक इस हफ्ते के बाद रूल्स चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, बैंक का प्रोग्राम नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है। ऑफिस आए 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, नंबर नोट करें, कॉल आप हमें अभी भी कर सकते हैं। 437-234-3175 कॉल करो, एस्टिमेट लो। आज के टाइम में अगर आपको लाइक 70,000 की फंडिंग बन रही है उसमें से हाफ पोर्शन तो ग्रांट है जो आपने वापिस ही नहीं करना, और लाइक देयर इज नो कुंडी इन इट, कोई कैच नहीं है। 437-234-3175 437-264-3175 437-234-3175 थैंक यू जी, कॉल अभी करें।
0: बहुत शुक्रिया जी। 437-234-3175 437-264-3175 जे तुसी $30,000 तो $1,00,000 तक दी ग्रांट्स और फंडिंग लेना चाहते हो तो तुसी यूनी ग्लोबल एडवाइजर नाल गलबात कर सकते हो। अपना स्किल डिवेलप करने दे लई पूरी ड्यू डिलीजेंस तुसी उन्हां नाल कॉल करके कर सकते हो। 437-234-3175

0: सच कह जाऊंगा।
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: गुरु दी पानी सच है, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

सतगुर होई दयाल ता सरदा पूरी है, सतगुर होई दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुर होई दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुर होई दयाल ता हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ

ऐसे खूबसूरत नगमे छुण चरखे दी मिठी मिठी कूक ते जदों पीड़ ओ हो क्या बात है। सो ऐसे यार तुसी किवें मिस कर सकते हो मास्टर सलीम लाइव।

0: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी ही शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नो।
1: मैं के अचन जी सलाम कहने
0: दिलानु टुंबन वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तराने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गुंजनगे 24 जुलाई नो। इवेंट्स दिनार ता फिर देर किस गल्दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा आज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लाई तुसी रोहन शर्मा नु कॉल कर सकदे हो 647-783-9
2: ओके 905-673-3337। ओके मेरे कोले हुण इक इनफॉर्मेशन आई आ। सो मेरे कोले कुछ टिकटां आईयां 10। सो 10 टिकटां चलियां गईयां। सो मैं थानू 50% डिस्काउंट दे सकदा आ। मेरे कोले स्पैशल रेडियो डान दियां मैं बहुत पहला एक थोड़े नाल वादा कीता सी कि रेडियो उड़ान सुनने वाले स्रोतियों वास्ते ना मैं एक वधिया गिव बैक करूँगा। सो तुसी जो milnatickets.com ते जाना है तुसी देखना कि एक टिकट $60 की पैनी थानू, एक पैनी आ $80-85 की। सो मैं थानू जिहड़ी VVIP टिकट आ वह मैं $50 च करवा देनी आ। $80 की टिकट $50 दे विच, ते जिहड़ी टिकट थानू पैनी आ $60 दे विच वो थानू मैं लैके दे देनी आ $30 दे विच। पर मेरे को बहुत लिमिटेड टिकटा आ, ये तुसी एक्शन लेना आ क्विक। सो जिदे मैनू मैसेज आ गए तुसी मैनू मैसेज कर दिओ। मैं तुहानू दो नंबर दिना, तुसी रोहन नू डायरैक्ट मैसेज कर दिओ 647-783-9873, या तुसी मैनू मैसेज कर दिओ किनियां टिकटा। तो बहुत वधिया प्राइज तुहानू $30 जनरल एडमिशन, तो VIP $50 VIP गाइज $80 की टिकट थोड़ा $50 मिल रही है। सो वेरी लिमिटेड आ। सो क्योंकि दिन रह गया दो, सो आप कमेंटी को गिव बैक ही कर रहे हैं जी, प्यार ही लेना बस कमेंटी का। सो रोहन कहता कि कर दो क्योंकि हाउस आप फुल करना है। सो बहुत लिमिटेड दी टिकटा रह गई, सो कल आप फटा ला देना सोल्ड आउट का। सो कॉल कर लो 437-870-001। कॉल ना करो मैसेज कर दियो। सो या मैं मिस कॉल मार दियो, मैं प्रोग्राम तो बाद कॉल कर लूँगा 437-870-001 437-870-0001। तो मैं मिस कॉल दे दियो या मैं मैसेज कर दियो जिन्हिया टिकटा चाहिए, तो फिर रल मिल के मास्टर सलीम का शो यार मिस ना करो। ऐसे खूबसूरत शो, ऐसिया खूबसूरत आवाज़ा वार वार थोड़ी आदियाँ थोड़े शहर। सो 905-673-3337 ओह माई गॉड, ये तो ग्रैंड फर्नीचर च मास्टर सलीम मिक्स हो गया।

तीन टिकटां जरनैल भाई जी, क्या बात है। सो दो टिकटां नरिंदर कौर, थ्री टिकट्स भाई थोड़ियां डन हो गई, जिड़ी जिड़ी मैं बोल रहा, थोड़े मैसेज आ रहे हैं। टू टिकट्स पर मैनू प्रवीन, ओके सो प्रवीन जी, ओके थोड़िया भी दो टिकटां डन हो गई। जॉन मसीह जी की कॉल आई है, जॉन मसीह जी तुसीं मैनूं मैसेज कर दो किन्नियां टिकटां, ताकि मैं थोड़ियां टिकटां रख सकां। सो $30

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
0: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह

0: शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई। याद रखो, देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नू 416-930-1251 416-930-1251।
1: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ, ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
2: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
0: ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
2: 416-717-2929
0: 416-717-2929। ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ 4, ਇਟੋਬੀਕੋ।
3: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रूह का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसेस आगा कन्वेंशन सेंटर दे विच।
4: मैं के अचन जी सलाम कहने आ।
3: सिर्फ से सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल। ता फिर देर किस गल दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा अज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधू नू कॉल कर सकदे हो 647-783-9873 या 437-870-0001 ते।

0: सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल
1: 647-706-6640-647-706-6840।
2: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जेएन गैरी नूं
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533 ते
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
6: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश करदे ने पंजाबी विरसा 2026
7: ओए सावण चढ़िया ती
6: टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नूं
7: दुनिया मेले जांदी
6: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026
1: सावन चढ़िया
0: टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नो
1: दुनिया मेले जानती
0: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: मेरी पहली पसंद,
2: I love it.
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती.
1: हम सबकी पसंद
4: रेडियो आवाज,
1: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530. नॉन स्टॉप कॉल्स, नॉन स्टॉप टॉक्स. प्रमोट योर बिजनेस विद अस. कॉन्टैक्ट 416-518-3200.
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे. कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही.
6: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं.
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया.
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता.
9: रेडियो आवाज,
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते. वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.
11: घर नूं पेंट करवाउणा हुंदा है, कन्फ्यूज हो जांदे हो. बहुत सारे पेंटर्स ते पेंटिंग कंपनी दे नंबर, पर तुसी रियल्टी पेंटिंग नूं क्यों नहीं चुनोगे? फायर स्टेशन, फाइव स्टार होटल्स, बिल्डर दे कस्टम कार्स या सरकारी इमारतां नूं पेंट कर चुके हन, उत्थे तुहाडे घर नूं 24 घंटिआं दे अंदर अंदर पेंट कर दिंदे हन. इन्हां दा रेट इन्हां दी क्वालिटी नूं कोई भी मैच नहीं कर सकदा. 7 साल दे कीते हुए काम दी गारंटी होवेगी. फ्री एस्टीमेट लई सुखमन नूं कॉल कर सकदे हो 416-816-8401, 416-816-8401.
12: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, विल बनाउन लई फैमिली लॉ जां फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ. कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल, बैरिस्टर, सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक, लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट. फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 905-497-1211, 905-497-1211.
13: 2 ब्याह कीते इंडिया च, एको ही बाजार विच सब कुछ हो गया. ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ.
14: ਸਾਫਾ ਟਰਬਨ, ਟਰਬਨ ਵੈਡਿੰਗ ਐਕਸੈਸਰੀ, ਸਫਾਰੀ ਸੂਟਸ, ਕੁਰਤਾ, ਕੋਟ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ, ਕਲਗੀ, ਕਸਟਮ ਕਰਪਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਗੜੀਆਂ,

0: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हां ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल टेस्ट वाला गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए सर्विस भी टॉप नॉच सी टाइम ते डिलीवरी प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
3: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
4: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
5: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज

लोग आज खूबसूरत सवेदा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क सी चलो डिजिटल एएम फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सानू सुन रहे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हो। उम्मीद दिन कुछ कुमार चढ़दी कला वाला नर पाओ नरवैर मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे। और एक बार फिर तो एक ग्रे स्काइज दे नाल मिक्सचर ऑफ सन एंड क्लाउड्स दा अज दी सवेर जिथे मैं पीयरसन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 खाली उत्थे 401 ईस्ट बाउंड मूविंग वैल वैसट इज लड़पत स्लो और डेयरी रोड के उपर गचागच ट्रैफिक मैं देख रहा जिते प्राइम टाइम के रश आवर के टोरंटो के सब तो वह सुने जाने वाले शोज़ के सानू शामिल करते हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद एक बार फिर तो तुम साढ़े नाल 10 बजे तक रहोगे। और शो तो बाद अगर किसी ने भी मेरे नाल कॉन्टैक्ट करना होंगे कॉन्टैक्ट करने लिए नंबर है 416-518-3200 416-518-3200 नंबर के उत्ते साढ़े गलबात कर सकते हो। और जो गल्लां बातें भी तुहाडे नाल होणगियां खबर खुल खुलासे जिथे कॉकरोच कुकरोच ना दा कोई आई डोंट बिलीव इन कि कोई मिनिस्टर कह दे कि तुसी कॉकरोच ने लोग तां तुसी कॉकरोच पार्टी बना लवो। तुसी कॉकरोच की जगह पर शेरां की पार्टी बना सकते हो कि असीं शेरां जदों दहाड़दे आ तां उदों सरकारां हिलदियां ने ते ओ कॉकरोच पार्टी वाले ने जड़े शायद लेटर ऑन अपना चो निशान चेंज कर देना आई होप सो। पर दूसरे पासे नरेंद्र मोदी नू पार्लियामेंट दे विच्चों स्पेशल सिक्योरिटी राही निकलना पिया क्योंकि पार्लियामेंट दे आस पास स्टूडेंट्स जड़े पहुँच चुके ने। ते दूसरे पासे जिन्हें भी किसान अंदोलन शामिल कुछ ग्रुप्स ने उन्हां वल्लों भी अपनी कूच कर दी है। 400 बस दसी जा रही है पंजाब तो चली है हरियाणा चो चले ने यूपी और राजस्थान चो वेट कर रहे हैं। लैट्स सी कदों जागते ने वो चल रहे ने कि डोनाल्ड ट्रंप के नाल जो डील्स साइन कीतियां ने इंडिया ने वो फ्यूचर जिहड़ा खेती का उन्होंने खत्म कर देणगियां। डोनाल्ड ट्रंप की डील्स नूं अगर एक्सप्लोर किया जाए लोगों से लिया जाए मैं याद है मेरे ब्रदर जर्नलिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा है जिद हैड है तो उत्थे उन्हें मैंने एक गल कही कहते जी डील साइन हुई है ना अमन अमेरिका और इंडिया की वो डेंजरस है आने वाले सालों के खेती के उत्ते बड़ी वड्डी खेती दे सेबां तो लैके हिमाचल के सेब ने जोड़े उन्होंने तो लैके बड़िया खेतियां असर पाऊगी क्योंकि जोड़ा समान अमेरिका तो पहुँच कै इंडिया पहुँचूगा लोकल फार्मर उन्हों बीट नहीं कर पाऊगा तो अपनी महंगाई के हिसाब न खर्चे नहीं कड होने तो डील गलत साइन होगी। मैंने कहता मैं क्या भी पता नहीं कहता हजे नहीं रौला पैना रौला ठहर के पाऊगा क्योंकि हजे किसी को पता ही नहीं गा डील साइन की हुई है। यही चीज़ राहुल गांधी कहता रहा कि तुम सानू लिया के दो असी लोगों को एक्सप्लेन कर सकी कि असी पेपर वर्क साइन की किया है। फिलहाल ये भी चीज़ा चल दिया ने तो कुछ होर गल्ला बातें नाल नाल तुसी किवें हो उम्मीद करदा चढ़दी कला चोंगे सो मिल मेरे प्रीतम जी हो तुद बिन खरी निमाणी ये रूह जड़ी मेरी है तेरे तो बिना निमाणी यदा कोई माण नहीं है यदि कोई सत्कार नहीं कोई इज्जत नहीं। हे सतगुर सच्चे पातशाह मिल मेरे प्रीतम जी हो सगल पवर ने कह नायिका एक छिन दरस दिखाए जी भगत रविदास जी सिर्फ एक छिन सैकेंड का भी कुछ पाठ हों कि जे मैं इन्ने चे दर्शन हो जाए मेरा जीवन जड़ा है सफला हो सकता है। यानी कि वह एनर्जी जो डॉक्टर्स हथ खड़े कर देंगे कि बंदा बच नहीं सकता बहाने होंगे ने स्वैलिंग हो गई है या कोई कोई भी बॉडी के कुछ भी दसिया जाता कि हो गया यदा इलाज नहीं हो सकता किनिया नाड़ा ने किनिया आंदरा किन्ने खून के सर्कल सैल टिश्यूज हर चीज़ अपने अंदर है पर बाहर आपां नूं कुछ नहीं पता। बाहर आपां नूं ये पता हौमे मेरे च किन्नी हैगी है मैं किन्ना तकड़ा हैगा मैं तो मेरा की हैगा सानूं सिर्फ ये पता सानूं अंदर एक भी छिंदा नहीं पता कि मेरे हार्ट च की हो रहा इस समय मेरी किडनीज नाल की हो रहा मेरे जिहड़े पार्ट्स ने फेलियर दसे जांदे ऑर्गनस उन्हां नाल की हो रहा। देखो असीं इन्ने के ताकतवर हाँ बस बारों बारों असी हाँ बारों तो मैं लत्तां गोडे अंदरों भरी पलीती हैं जी। सो असी गली असी चंगे आचारी बुराया मनो कुसुद्धा कालिया बाहर चटाया। सो इस रिसेशन ने हर बंदे दे उत्ते असर पाया जिथे कोई बंदा कहिंदा ना मेरे ते असर ना होवे बाकियां ते आ जावे ये भी फिर सैल्फिशनैस हो जाती है। इस रिसेशन ने हर बंदे ते असर पाया ये समा हुंदा असली तुहाडी पहचान दा कि तुसी अंदरों किदां दे हो तुसी दूसरों की मदद करन जोगे हो कि बस दूसरों तो पैसे लैण लई दुनिया दे उत्ते आए हैगे हो ते लैके ओह खर्चण लई आए हो ये मेकश्योर करना हुंदा। इस रिसेशन के असी परसनली मैं अपने एडवरटाइजर्स तो लैके अपने
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਿਜਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਤੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਰਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਰਮਨ ਦਾ, ਰਮਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਰਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਮਨ ਜੀ ਕੋ ਅਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਅਮਨ ਅਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਬਸ ਫਿਰ, ਅਮਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਅਮਨ ਆਜੂਗਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਪਰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਕਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਕਰਨੀ ਨੇ ਲਾਅ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਹੈ

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे हैं डॉक्टर कुमार। लेडीज के मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार। बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार। हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार। हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो।
1: भाई जी ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
2: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
3: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000

0: health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: क्लब एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल. एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704.
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर.
3: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो, ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे. साड़े अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा, ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते. तुसी मैनू कॉल करो, एदे लई नंबर है 416-524-3535, 416-524-3535 विद ए शाबरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस.

0: अमिताभ बच्चन साहब ही हॉस्पिटल एडमिट है भाई, एज दे लो कैसी पटा साहब।
1: हाँ जी,
0: किन्नी कमाल दी गल, मतलब कि बंदा सारी उम्र कमांदा रहिंदा है।
1: बिल्कुल,
0: मैनू हल तक ये नहीं समझ आती आपां कमाने किहदे वास्ते आ।
1: सारी
0: जिंदगी बंदे ने कमाया होगा, एंड दे हॉस्पिटल बैठा बंदा ते पिछे छड़ गया
1: सब कुछ।
0: 905-673-33 केड़े साल च मूवी आई सी किसे नू याद आ वीर मेरे ओ? प्यार करांगे फिजाओं में, कहंदा जिथे है आले दुआले सारा प्यार दा रंग ही चढ़िया होया। बड़े जो सॉन्ग मैन। हेलो
2: भाई, सत श्री अकाल जी।
0: आओ जी, की हाल है प्यारे हो?
2: बहुत वधिया, बहुत वधिया।
0: अरे एक है नहीं सोहनी क्यों हुंदी सी ओदा भाई?
2: अरे भाई जी, सब कुदरत दी खेड है जी।
0: अच्छा, कुदरत दी खेड है जी? हां
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, टैलेंट वगैरह, खूबसूरती है, सब कुदरत दी खेड है जी।
0: आ मूवीयां दे नाल जिहड़े बंदे आंदे हुंदे खूबसूरत है ना, ओदा दा बंदा
2: आया। बिल्कुल, यह मूवी आई सी सन 1981 दे विच।
0: 1981 दे विच?
2: हां जी,
0: बड़ी पुरानी मूवी यार ये तां फिर ना।
2: मैनूं सिर्फ 2 साल होए सी दुबई गए नूं।
0: अच्छा, तुसीं दुबई सी पहले?
2: हां जी हां जी।
0: चलो सुनो गाना फिर।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper tusi cheap flight tickets dipal de vichon Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services dipal de vichon puri family vacation upper jaan di soch ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna waji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar
4: aaj
5: ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਬਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ IPTV ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
4: ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ?
5: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
6: ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ?
5: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
7: ਡਾਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
5: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
8: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
9: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
8: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
10: विमला विली जिला विलिच पढ़ दी पी उच्च जंट पढ़दा, विमला विली जिला विलिच, विमला विली जिला विलिच पढ़ दी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल दा कैसी यार यकीन ही नहीं होंदा
2: तिनु इधर ते यकीन नहीं होंदा तू ए सुन सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तो हद कर विच इलेक्ट्रिक जो ऑयल हीटिंग है
1: इस गल ते मेनू पूरा यकीन है ओते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री च बार कर देंगे नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने
2: तिनु ए सब किवें पता
1: क्योंकि मैं भी पिछले साल ए लगवाया है
2: अच्छा ओ वेबसाइट ते ना की दसी सी
1: saveonenergy.ca/eap
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: Ullandi Suganda Varga, kisse charke di tanda varga. ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗਾ ਮੱਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੌ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵਰਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा बेस्ड स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है, पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारां लोकी आउंदे ने ते हजारां ही जांदे ने, पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स ही टिके रहंदे ने।
1: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहुंदे हो, तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू नाल संपर्क करो।
0: कॉल 416-457-3381 416-453-81।
1: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है, जिथे एडवाइजर्स लई बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज दा पूरा एक्सेस है।
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे लई पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज, डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
1: हां, इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने, चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम, या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो, अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381।
2: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
3: टुडे विच लाइव गलबात कर ले, हुणे कॉल करो 905-564-6444।
2: 905-564-6444।
3: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो, चलो AM 530 तो।